0: कर्ण नेपाली पेन्ट कम्पनी जस्मिन पेन्ट तीन दशक देखि नेपाली मनको रंग
1: रङ्गीन जस्ता पाता गुला जुरा कलर और से तीन गुणा बेसी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक आर्थिकाउ
2: हुला
1: छ त अरू कतिले खोज्दै

माफी चाहिए तलाई माफी चाहियो माफी चाहियो तलाई माफी त अब गयो अब त तर्छ न बाबु।